0: talking for about 3 years now, and I really want to see you soon. I hope your tour comes soon.
1: Oh, my Shakti, आज पहली बार तुमने काम की बात की है।